जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी फार आया मिनट गर्मी दिपे मामम अगर दुखा दर समाज